0: वॉक ट्रैफिक जब ऑफ ट्रैफिक मोटरसाइकिल को लेडी कॉल साइन 67α5118।
1: रजिस्ट्रेशन का इंक्लूड काफी क्लियर है, ऑनलाइन मेन कर सकते हैं प्लीज।
0: नेम चेन को लेडी कॉल साइन विक्टर 7α5118।
2: Tu reviens vers 15 en
1: décembre,
0: c'est bon? Oui, c'est bien,
3: The wind speed of same Calliope head is 3 knots, gusting 4 knots. Message end.
1: All station in the VTS area. All station in the VTS area. All station in the VTS area. No need to call Jobo Traffic when leaving the area. No need to call Jobo Traffic when leaving the area.